रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। अब हम आपको सुनवा रहे हैं दशावतार फिल्म का ये भजन संजीव अभ्यंकर व साथियों की आवाजों में।

0: इसी के साथ हमारा आज का भजन फिल्मों से कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: भक्ति खुद ही किनारा।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भजन फिल्मों से।
2: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से।

0: एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: Step into the world of Nexa.
3: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now it's yours at an effective price of just 6.75 lakh rupees.
3: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 31st August.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa. FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम युवा मंच का, और आज के दिन रहता है वीकली पल्स, जिसमें हम आपको देते हैं नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल अपडेट्स।

कार्यक्रम युवा मंच सुनने वाले सभी श्रोताओं को, हमारे युवा साथियों को, सभी भाई बहनों को आपके दोस्त वर्षा कटोश की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ युवा साथियों, हम हाजिर हो चुके हैं ठीक उसी समय पर, क्योंकि हमें पता है हमारे युवा साथियों को इंतज़ार रहता है अपने फेवरेट कार्यक्रम युवा मंच का। जी हाँ साथियों, और आपको ये भी पता है कि हम आपके लिए हर रोज़ लेकर आते हैं कुछ नया, कुछ नए अंदाज में युवा मंच कार्यक्रम। तो साथियों, आज का दिन है रविवार का दिन, और आप जानते हैं कि आज के दिन हम बात करते हैं वीकली पल्स की। एक बात हम आपसे ये साझा करना चाहेंगे कि कार्यक्रम के दौरान जो हम आपके साथ जानकारियां साझा करते हैं, उसका युवा साथियों ये कतई मतलब नहीं होता है कि आप अपडेट नहीं हैं। आप हमसे हो सकता है ज़्यादा अपडेट हों, लेकिन हम जानकारियां आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर इसलिए लाते हैं कि कहीं अगर कुछ हमारे युवा साथियों से, हमारे युवा भाई बहनों से छूट गया है, तो उसकी पूर्ति जो है वो इन कार्यक्रमों के माध्यम से हो सके। तो ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें कि आपको जानकारी किसी चीज़ के बारे में नहीं होती है। आप बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, आप हमारे युवा साथी जो हैं आप बहुत जागरूक भी हैं और अपडेट भी हैं, लेकिन कार्यक्रम में जानकारी देने का सिर्फ इतना मतलब होता है कि कुछ छूट गया है अगर, तो उसकी हम भरपाई कर सकें। और हम आपसे ये भी आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आते हैं तो आप हमें ज़रूर खत लिखकर भेज सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या ईमेल एड्रेस जो दिया होता है उस पे भी आप ईमेल कर सकते हैं। तो हम बातें और जानकारियां और मनोरंजन तो आपका करवाएंगे ही, लेकिन साथ साथ जानकारियां जो हैं वो बहुत सारी साझी करनी है आपके साथ। लेकिन उससे पहले हम आपका मूड जो है वो फ्रेश करना चाहेंगे, ताकि आप जो हमारा कार्यक्रम है उसको बिल्कुल अलर्ट होकर सुने। तो चलिए लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और फौरन हाजिर होते हैं आपकी सेवा में जानकारियों के साथ।

0: जी हाँ युवा साथियों, आपका कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि ये जो म्यूज़िकल ब्रेक थी वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपका फितूर भी हमारे सिर पर चढ़कर बोलता है, इसीलिए तो हम ठीक समय पर हाजिर हो जाते हैं आपको नई नई जानकारियाँ देने के लिए। तो चलिए आज बात करते हैं वीकली पल्स की और इसमें रहता है नेशनल इंटरनेशनल अपडेट्स। तो चलिए पहले बात करते हैं 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। राष्ट्र के नाम संबोधन प्रधानमंत्री ने कहा, हथियारी नक्सल तो चले गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में हैं। समाज को गलत राह पर ले जाने के लिए तरह तरह के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे लोग हिंसा अराजकता के रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा और इन्हें आइसोलेट करना होगा और विकसित राष्ट्र बनाने की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना अति आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के युवाओं के लिए कई परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। इससे पहले लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया, उसके बाद राष्ट्रगान हुआ, 21 तोपों की सलामी दी गई। जी हाँ युवा साथियों, जानकारियाँ तो हम आपके साथ इस कार्यक्रम के दौरान और भी साझा करेंगे, लेकिन लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
2: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
1: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
2: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
1: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।

कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी श्रोताओं का, हमारे युवा साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। युवा मंच कार्यक्रम में आज बात हो रही है वीकली पल्स की। जी हाँ युवा साथियों, भारत ने पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में जीत से शुरुआत की है। टीम ने शनिवार को वेल्स को 3-1 से हराया। टीम का अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ होगा। वैगनर स्टेडियम में संजय ने पेनल्टी पर गोल करके टूर्नामेंट में भारत के गोल का खाता खोला। फिर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे वेल्स की ओर से सैम वेल्श ने गोल करके हार के अंतर को कम किया। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे दिन बारिश के कारण करीब 4.5 घंटे के बाद खेल शुरू हुआ। भारत ने 6 विकेट पर 370 रन बना लिए हैं और फिलहाल तीसरे सेशन का खेल जारी है। गॉल स्टेडियम में देवदत्त पड्डीकल 167 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल ने 82, ऋषभ पंत ने 39 और रविंद्र जडेजा 13 रन की पारी खेली। ध्रुव जुरेल और मानव सुथार क्रीज पर हैं। भारत ने पहले दिन का खेल 2 विकेट पर 288 रन के स्कोर पर समाप्त किया था, जबकि बारिश के कारण दूसरे दिन का पहला सेशन पूरी तरह से धुल गया। जी हाँ युवा साथियों, फिर से हाजिर होंगे हम जानकारी के साथ, लेकिन लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और फौरन हाजिर होते हैं आपकी सेवा में। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए FM धर्मशाला के साथ 103.4 MHz पर।

कार्यक्रम युवा मंच में फिर से हमारे सभी युवा साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स की। युवा साथियों, ईरान के साथ समझौते की अमेरिकी कोशिशों से उसके कुछ खाड़ी सहयोगी निराश हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों को लग रहा है कि लंबे समय से बातचीत चलने के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच अब तक कोई पक्का समझौता नहीं हो पाया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने खाड़ी देशों के ट्रंप से नाराज होने की खबरों को खारिज किया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ट्रंप के खाड़ी देशों के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते हैं और युद्ध शुरू

के बाद से अमेरिका लगातार उनके संपर्क में है। ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि अमेरिका फिलहाल ईरान पर नए हमले की तैयारी नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ आधी अधूरी बातचीत कर रहा है और वहां के खराब आर्थिक हालात पर नजर रख रहा है। जी हां युवा साथियों, अब हम बात करेंगे लोकल अपडेट्स की, यानी कि हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सीजन अगले एक सप्ताह तक भी बारिश से हमें राहत के आसार कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। खासकर कल और परसों राज्य के ज़्यादातर भागों में बारिश भारी से भारी होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक आज बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी जिला में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आज रात के मौसम में बदलाव आने की संभावना है, इसके बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इसे देखते हुए 17 अगस्त को बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में कुछ एक स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति और सोलन जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। इन क्षेत्रों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 18 अगस्त को ऊना, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बिलासपुर, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर और लाहौल स्पीति जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। प्रदेश के मानसून के चलते अब तक 183 लोगों की मौत हो चुकी है और इनमें से 103 लोगों की जान सड़क हादसों में चली गई, जबकि लैंडस्लाइड के कारण 14 लोगों की मौत हुई है। भारी बारिश के चलते राज्य में करीब 972 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। फौरन हाजिर होते हैं, लेते हैं पहले छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

युवा साथियों, कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में, तो चलिए चलते चलते आपको लोकल अपडेट दिए देते हैं। धर्मशाला में भारी बारिश के कारण ऊपरी क्षेत्रों जैसे डेलेक अस्पताल और चरानखट के पास में बाढ़ जैसे हालात और भूस्खलन जैसी स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर पानी भरने और मलबा आने से यातायात प्रभावित हो रहा है और इंद्रनाग मार्ग पर पेड़ गिरने से रास्ता भी बंद रहा। इसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार धर्मशाला में 19 करोड़ रुपए की लागत से पहला रिमोट सेंसिंग केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे किसानों को डिजिटल डेटा मिलेगा।

युवा साथियों, अब घड़ी की सुइयां आपकी दोस्त वर्षा टोश को ज्यादा बोलने की अनुमति नहीं दे रही हैं, तो चलने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। और साथियों, चलते चलते एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि भारी बारिश हो रही है, ऐसे में आप अपना और अपनों का, खासकर बुजुर्गों का और बच्चों का ध्यान रखिएगा। चलती हूँ, अगले कार्यक्रम में फिर से मिलूंगी। अब अपनी दोस्त वर्षा टोच को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

इसे शाम के प्रसारण में रिले होने वाले कार्यक्रमों पर डालते हैं। शाम 7 बजे हिंदी में समाचार, शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार, संध्या 9 बजे न्यूज एट 9, रात्रि 10 बजे से लेकर 11 बजे तक रविवार स्तरीय संगीत सभा, रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार व 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये थी विस्तृत रूपरेखा हमारे धर्मशाला के केंद्र से आज शाम को शेष प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के बर्फीले इलाकों में जनगणना का दूसरा चरण 1 से 30 सितंबर के बीच चलाया जाएगा। इन इलाकों के नागरिकों की सुविधा व आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल 17 अगस्त से 31 अगस्त तक स्वगणना का विकल्प भी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। जनगणना कार्य निदेशक दीपशिखा शर्मा ने संबंधित क्षेत्रों के लोगों से इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश में भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सबको साथ लेकर चलने की राजनीति में विश्वास रखते थे और देश के निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाना चाहिए।
1: आज अटल जी की 8वीं पुण्यतिथि है। वो देश के प्रधानमंत्री बने और निश्चित रूप से हिमाचल से उनका एक लगाव था। आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। वो सबको साथ लेकर चलने की राजनीति में विश्वास करते थे, जो आजकल बहुत कम दिखने को मिल रही है।
0: इस दौरान विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी करोड़ों देशवासियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को वाजपेयी की देश के लिए सबसे बड़ी देन बताया।
2: अटल जी का देश के लिए बहुत बड़ा योगदान इस रूप में रहा है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्होंने शुरू की। उस योजना के अंतर्गत पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल आज चौतरफा पहुंचा है ग्रामीण क्षेत्रों, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वजह से। और उनका ये मानना था कि सड़कें अगर गाँव तक पहुँचेगी तो गाँव का विकास होगा। गाँव में गरीब आदमी को अपनी फसल, एक किसान को एक अपनी फसल, बागवान को अपनी फसल मार्केट तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। बीमार आदमी को पीठ पर नहीं उठा करके गाड़ी में हॉस्पिटल तक ले जाने की सुविधा मिलेगी।
0: विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों को अनसुना करने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री झूठे आश्वासन देने के आदी हो चुके हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि

0: अब राज्य की खराब आर्थिक स्थिति के बहाने अनाथों और विधवाओं के नाम पर पेट्रोल डीजल पर सेस वसूल कर सरकार चलाई जा रही है। प्रदेश भर में कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रदर्शनों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और उनकी चुनावी गारंटियां, बजट घोषणाएं और वायदे केवल कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव देष्टा ने मोर्चा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से संगठन को और अधिक सक्रिय व मजबूत बनाने का आह्वान किया है। हमीरपुर जिला किसान मोर्चा की आज बड़सर में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा भाजपा की संगठनात्मक ताकत का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में किसान मोर्चा की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है। कांगड़ा जिले के शाहपुर बस अड्डे में करीब 46 लाख रुपए से नया इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। स्थानीय विधायक व उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने चार्जिंग स्टेशन के लिए धन स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इससे शाहपुर में इलेक्ट्रिक बस सेवा को मजबूती मिलेगी और लोगों को पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार 20 अगस्त को शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस पदाधिकारियों, जिला प्रभारियों और जिला कांग्रेस अध्यक्षों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव विनोद जिंटा ने बताया कि बैठक के लिए प्रत्येक जिला अध्यक्ष के अब तक के कामकाज का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में हल्की वर्षा जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। हालांकि राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान कुछ जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। कल 17 अगस्त को बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शामी गजल। शामी गजल कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं हाजिर हुए हैं कुछ गजलें लेकर। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं जगजीत सिंह और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में गाई इस गजल के साथ।

0: अभी आपने सुने जगजीत सिंह व लता मंगेशकर के युगल स्वरों में गाई ये गजल। कार्यक्रम शामे गजल इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price, starting from just 9.67 lakh rupees.
1: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 31st August.
2: Own the style icon at an EMI of just 899 rupees per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbag as standard.
2: Hurry, limited stock available.
1: Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
3: Nexa.
4: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम में फिर से आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं चित्रा सिंह की आवाज में गाई ये गजल।

0: अभी आपने सुनी चित्रा सिंह की आवाज में गाई ये गजल। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG with 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of 7.39 lakh rupees. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
2: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
3: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
2: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
3: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
2: जल्दी विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
4: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम शामे गजल में फिर से हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं मिताली सिंह की आवाज में गाए ये गजल।

0: अभी आपने सुनी मिताली सिंह की आवाज़ में गाई ये गज़ल, कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति तलत अजीज़ की आवाज़ में।
1: एजाज़ जां वही है हमारे कलाम को, जिंदा किया है हमने मसीहा के नाम को। मुद्दत से नाम सुनते थे मोमिन का बारे, आज देखा भी हमने उस शोरा के इमाम को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शामी गजल FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं के लिए विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको डायल करना होगा हमारा दूरभाष नंबर 01892224391।

सजी फोन इन कार्यक्रम मिंजरा लेके हाजिर होइए थोड़ी बड़की बोबो वर्षक टोच तो साड़ी बोबो भैनों साढ़े जेडे न्याणे स्याणे हैं बजुर्ग निक्के न्याणे साढ़े छोटे भाऊ भैन जेडे हैं तुहां सारे हो थोड़ी बड़की बोबो वर्षक टोच की तरफ से प्यार भरे राम राम तकदे हैं तुहां। मैं तो ये भगवान अगे प्रार्थना करती कि तुहां सारे अपने अपने घर चुस्त तंदुरुस्त रहन कने खूब मौज मस्ती करन क्योंकि अजकल बरसात निक गई हो कने बाहर तो निकल ही नहीं होना तो घर अंदर मस्त रहा तंदुरुस्त रहा है ना जी। तो अज अहां अपनी बोबो भैणां दसी दीए कि अज अहां गलबात करनी है बरसाती दे जेड़े पक्षी होंदे ना कुरल कुरलाने अज अहां तिहदे बारे च गलबात करनी है कने साढ़े कन्ने जुड़ने तईं साढ़ियां जेड़ियां बोबो भैणां हैं तिन्हें डायल करना पौना साढ़े स्टूडियो दा नंबर कने सै 01892-224-391 कने अहां खूब सारियां अज गप्पां च उठनियां पर गप्पां इयां नी वेई तां तूं हुंदियां अहां गप्पां मारनियां पर कम्मे दियां गप्पां मारनियां है ना जी। तो साढ़ी श्रोता भैन जिहड़ी है इक जुड़ी चुकी है आवा हां जरा गल बात करिए इहनां कन्नै। हैलो,

0: हाँ जी, राम राम
1: नमस्ते
0: जी।
1: मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी। अपना पहले नाँ दसी दिया कने फिर ग्राएं दा नाँ भी दसा कने फिर यहाँ गलबात करनी।
1: अच्छा जी, मैं मीनाक्षी बोला दी छतड़ी ते।
0: छतड़ी ते मीनाक्षी जी बोला दे। अच्छा जी, छापरे वाली छतड़ी।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: ता तुहां सुनिया होना विषय, विषय ता क्या, पर जेड़ियां साड़ियां इत्थों दे लोकल जेड़ी साड़ी संस्कृति सभ्यता कने कुछ एक चीज़ां जुड़ियां इन्हां मौसमां कने तिदे बारे च, जेड़े दो पक्षी बंदे जेड़े बरसाती दे दिनां च तिदे बारे च, कुरल कुरलाणी तिदे बारे च
1: हाँ जी,
0: क्या जानकारी देंगे तुहां साड़े सुनने वालियां श्रोता सखियां कने बाकी सारे जितने भी सवेला साड़े कार्यक्रम जो सुना दे।
1: हाँ जी। कुरल कहना कुली बोंदे तो सै, बारिश होंदी बड़ी
0: हाँ, तो अजकल कौन
1: ज्यादा।
0: बैठिया इन्हां दिनां च, कौन बैठिया कुछ दसी सकदे तुहां?
1: कुरली बैठी अजकल, ता कुरली बोंदी बोलदे।
0: तो इसका मतलब जानकारी तो अंजो भी आई नहीं है पूरी, सुन सुनाई गल
1: पूरी
0: है।
1: तो नहीं है। हाँ जी, हाँ पूरी तो नहीं है, ये पर ये बोलते हैं ना, फिर
0: चलो,
1: सियाने
0: पर
1: हरे
0: एक
1: बोलते
0: गल
1: हैं
0: है,
1: ना।
0: अच्छा लग्या
1: हाँ
0: मीनाक्षी जी की कम से कम याद तो है वे कुरल कुरलाणी बहिंदे हैं, है ना।
1: जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: तो इं भी पहले बैठदा कुरल मेरे ख्याल च,
1: अच्छा जी,
0: अहां
1: हाँ
0: भी
1: जी,
0: साढ़े जेड़े दादियां नानियां बुजुर्ग जेड़े थे या ग्रां च
1: हाँ
0: या
1: जी,
0: अखबारां च या सारियां जगह
1: हाँ
0: ये
1: जी।
0: जानकारी
1: बुजुर्गां ते
0: होंदी।
1: सुनिया ना, असा बुजुर्गां ते
0: हाँ
1: सुनिया
0: जी, हाँ
1: अपने
0: जी। तो
1: ते।
0: बोलते पहले बंदा कुरल,
1: अच्छा जी,
0: ठीक है जी। तो मेरे
1: अच्छा,
0: ख्याल ये पिछले महीने दे जेड़े ये सौन महीना हुण मुकना ना,
1: हाँ
0: ता
1: जी,
0: 8 दिन इस दे लेंदे वी इश बहना कुरल है, ता कुरली अति दी सेवा करनी है ना।
1: हाँ जी, हाँ
0: कने मेरे
1: जी,
0: ख्याल कल संगरांद है,
1: हाँ जी, हाँ जी। कल सगरांद है?
0: याद है कि नहीं है?
1: नहीं, याद है, कल
0: तो कह
1: सगरांद
0: दी
1: है।
0: संगरांद है कल?
1: कल बरसाले वाली सगरांद शुरू हो जानी ना।
0: नहीं, बरसाले वाली तो हो जानी, पर क्या बनांदे कल की है संगरांदी यो?
1: साढ़े बस इतना नहीं मनाते ना ये।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: बोलदे
1: और
0: फिरी।
1: अगली सैर होनी है, अगली सारी दी
0: हाँ जी,
1: सगरांद
0: हाँ
1: वाली।
0: जी, हाँ जी। ये जेहड़ी संगरांदी ओ मतलब दूआ पक्षी बैठी जांदा कने जालू ए दोनों पक्षी बैठी के 8-8 दिन फिरी 16 दिन जालू पूरे हो जांदे तां
1: हाँ जी,
0: बोलदे
1: हाँ जी, सोलह
0: बरसाती
1: दिन
0: दा
1: हो
0: एक
1: गए।
0: किस्मा दा खात्मा हो जांदा है ना।
1: हाँ जी,
0: फिर
1: हाँ जी,
0: आंदी जांदी बरसात हुंदी वे कुछ की लगी हो कुछ की नहीं लगी हो, ठीक है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: तां हुण तां तुहां पूरी जानकारी ले ली ना।
1: हाँ जी। बड़े धन्यवाद तुहाडा, बड़ी जानकारी, बड़ी अच्छी
0: हाँ, तां हुण
1: जानकारी
0: तुहां
1: दित्ती
0: ना
1: तुम। हाँ
0: अपने हद तक ही नहीं रखनी, बोलदे
1: जी,
0: वे
1: हाँ
0: घरे
1: जी,
0: च एक जनानी है पता
1: हाँ,
0: होया सा दसा बंदे हो गां जागरूक करी
1: हाँ
0: सकदी
1: जी,
0: है ना।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ
0: ता
1: जी,
0: तुहां अपने बच्चे भी दसना कने तिने भी इन्हां चीज़ां कन्ने जोड़ना ताकि आने वाले जेड़े साड़ी जनरेशन है तिसे भी ये सारियां रीति रिवाज, ये सारियां छोटियां छोटियां गल्लां जेड़ियां साड़े रोजे दी जिंदगी कन्ने जुड़ियां ना ये पता
1: हाँ
0: होना
1: जी,
0: चाहिदियां है ना जी।
1: हाँ जी, हाँ
0: ता
1: जी,
0: और भी कार्यक्रम सुन दे तुहां रेडियो दे
1: हाँ जी, सुनते रहते, क्या
0: ता कदे लगदे?
1: गाए, क्या अच्छे लगते। सुबह
0: अच्छा चलो,
1: आए तो बड़े अच्छे लगते, जालू सुबह सवेरे सवेरे जल रोटिया टाइम होंगे, कन्ने भजन
0: बिल्कुल।
1: वगैरह
0: कन्ने
1: लगते होंगे।
0: कन्ने रेडियो सुनने का सबसे बड़ा फायदा है कि टाइम नहीं खराब होता है ना, कम्मे
1: हाँ
0: करते
1: जी,
0: रहे
1: हाँ
0: कन्ने
1: जी,
0: रेडियो सुनते रहे।
1: रेडियो सुनते रहा।
0: तो ठीक है मीनाक्षी जी, तुहां फोन किया कार्यक्रम मिंजरा च, तुहाड़ा बड़ा बड़ा धन्यवाद। कन्ने तुहां इं जुड़े रहना आकाशवाणी धर्मशाला कन्ने, कन्ने सुनते रहना खरे खरे प्रोग्राम, ठीक है जी।
1: हाँ
0: जुड़ने
1: जी, हाँ
0: तइयें
1: जी,
0: मता मता धन्यवाद।
1: हाँ जी,
0: तो जी साड़ियाँ जड़ियाँ बोबो भैन हैं तिन्हों पता तो लगी है होना कि अज अह गलबात करा दे कुरल कुरलाणिया के बारे च। तो अज मिंजो लगा दा मेरी श्रोता सखियां सारियां तैयार होई के बैठियां फोन करने। हैलो,
1: हेलो।
0: हाँ जी, अपना नाँ दसी दिया कने ग्राएं दा नाँ भी दसी दिया।
1: मैं तलवाड़े से बोल रही हूँ।
0: तलवाड़े ते टेरेस तलवाड़ा।
1: जी,
0: अच्छा जी, तो थोड़ा ना अपनी वॉल्यूम बढ़ाई लिया क्योंकि थोड़ी क्रैक हो रही आवाज़ ना। ता क्या कर दे तू? हाँ
1: कुछ नहीं जी, घरे रहते।
0: अच्छा, तो घरे दे काम तो बड़े बारी होंदे।
1: हाँ जी, अच्छा,
0: मैं बोल
1: कम
0: दी
1: टाउन में
0: नौकरी
1: होंगे
0: कीती हो
1: काम।
0: खरी के ना, घरे दे काम तो बड़े खतरनाक होंदे है ना,
1: हाँ जी
0: कम में ना नहीं होंदा कने खुरिया बसरा नहीं होंदा।
1: जी
0: हाँ, तो आज तुम विषय सुनिया होना,
1: हाँ जी,
0: तो
1: मैं
0: तुम क्या बोलना चाहेंगे इस विषय पर, तो जो जानकारी है।
1: पूछना था कि तो हम बोल रहे थे कि

0: कीड़ा हाँ विषय लिया था ना जी पिछली बार, यहाँ बड़ी इस पर विस्तृत जानकारी दीती थी। ता हर कार्यक्रम चाह अलग अलग विषय लेंदे ना, ता साड़ियाँ बोबो पहनाए चाहिए ना कि हर कार्यक्रम जेड़ा ऐसा पूरी सावधानी करने सुन, ताकि तिन्हें पता हो है कि यहाँ हर त्योहारियों जेड़ा ऐसा है अलग अलग विषय लेंदे। ता आज तू हमें जो ये दसा भी कुरल कुरानिया पर क्या बोलना चाहेंगे तू? हाँ
1: ही बोलते भी दो पक्षी हुंदे तो सह पक्षी किस तरह के पक्षी हुंदे दिखे किसी ने देखे हो तो
0: बिल्कुल
1: मतलब
0: बिल्कुल, मैं तुहानू दसना चाहूंगी कि जसिंगपुर वाले पासे ना
1: हाँ जी
0: साढ़े दादी माँ सुनांदे थे, कने बुजुर्ग सारे बोलते कि जेड़े जसिंगपुर दे रिहायशी हैं ते तू ब्यास नदी दे कंढे है ना,
1: जी जी
0: बोलते भी
1: जी जी
0: नौना पर जालू जे सवेरे पानी लेना जाते ना
1: जी जी
0: तो एक पक्षी बहंदा तो दूआ जी मच्छी लिया के दिंदा तिसियो,
1: ओके
0: ठीक
1: ठीक
0: है जी?
1: है जी
0: तो
1: ठीक
0: तिथु
1: है हाँ
0: सवेरे रोज मच्छी पी होंगी ही एक। ये जिहड़ियां गल्लां बणियां ना जी साढ़े इन्हां कन्नै जुड़ियां ना,
1: होंगी होंगी होंगी हाँ
0: है ना जी?
1: जी
0: तां ये बिल्कुल मतलब कि ये जाचियां परखियां गल्लां हैं ना, तां ही इयां थोड़ी नहीं बोलदे भई तू अखबारां च भी पढ़दे होने कि जियां स्टार्ट होंदे कुरल कुरलाणी जियां बैठदे तियां सारियां अखबारां च लिखोया हुंदा, है ना जी?
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: हाँ,
1: जी
0: तां 8 दिन एक पक्षी ने बैठना, तां जियां मेल बहंदा तां फीमेल ते दी सेवा कर

0: हाँ जी, तां बोलदे भी बरसात जिहड़ी है हुण तुहां दिखिया होणा कि लगातार लगी हो,
1: जी जी
0: तां
1: जी
0: इह 16 दिन जिहड़ी बरसात होणी मेन बरसात बोलदे इस युग ने, तिस ते बाद तां फिरी कुथी धुप कन्नै कुथी छां कुथी फवाइयां पवा दी जियां बौछार होआ दी, कुथी 10 कदमां पर तुहां चल गए तां तित्थों धुप लगी होणी, है ना जी। तां हुण तुहां मिंजो लगदा कि ले ली होणी पूरी जानकारी, है ना।
1: हाँ जी हाँ जी, मैं जो बस यही पूछना था भी जड़ी संग्रांत तक कंफर्म करना
0: चलो
1: था भी।
0: तुहां जिन्हां पिछला कार्यक्रम सुनिया होगा रविवार वाला, तां
1: हाँ
0: तिन्हें
1: जी,
0: पता
1: मैंने
0: होना।
1: नहीं मिस हो गया, नहीं सुनिया। अगली अब शहर वाली आएगी ना
0: हुण तो
1: जी।
0: अंजो हाँ कान लाइता कि तुहां हर वरिया जिहड़ा तुहार वार होना ना, तां तुहां संझा जरूर अपना 6:30 बजे रेडियो सेट ऑन करना, ठीक है जी।
1: ठीक है
0: तुहां इस
1: मैं
0: कार्यक्रम
1: शहर
0: च
1: की डिस्कशन कालू करनी थी। हाँ
0: अगले तुहारे करने
1: ठीक है जी, मैं अगले पक्का अगले
0: पूरा
1: संडे फोन
0: तुहां
1: करती
0: तैयार
1: हूँ
0: होई के आना
1: जी। जरूर जी जरूर,
0: डिस्कशन वास्ते, ठीक है।
1: ठीक है जी,
0: वैसे कदे लगदे तां जो सारे कार्यक्रम धर्मशाला
1: बहुत
0: दे,
1: अच्छे। जी
0: चला तां तुहां कार्यक्रम च फोन कीता, तिस दियां तुहाड़ा मता मता दिले ने धन्यवाद,
1: आपका
0: कने
1: भी धन्यवाद जी, बहुत अच्छा जी।
0: धन्यवाद तुहाड़ा भी, कने
1: ओके
0: इयां
1: जी।
0: इयां ही जुड़े रहा तुहां आकाशवाणी धर्मशाला कन्ने। तां बोबो भैनों भी इयां है भी तुहां हर रविवार यानी कि तुआर बार जिहड़ा हुंदा ना तुसीं तुहां ना अपना रेडियो सेट जिहड़ा सा बिल्कुल 6:30 बजे जिहड़ा है ना अपने कन्ने रखना, कने पूरा मतलब ध्याने कन्ने सुनना, क्योंकि हर तुआरे जिहड़ा सा अहां कोशिश करदे कि तुहाड़े कन्ने जुड़ियां गल्लां जिहड़ियां ने या ग्रां ने जुड़ियां जिहड़ियां गल्लां ने, रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति, कन्ने त्यौहार जिहड़े तिन्हां कन्ने जुड़ियां गल्लां ने तिन्हां दे बारे च अहां जिहड़ा सांझो पता नहीं हुंदा सा अहां अपनियां बोबो भैणां ते जानकारी लैंदे, कन्ने जिहड़ा सांझो पता हुंदा सा अहां तुहाड़े कन्ने साझा करदे, ठीक है जी। अज मेरियां बोबो भैणां नहीं मन्नां दियां भाई। हैलो हैलो जी,
1: हेलो,
0: हाँ जी,
1: नमस्कार जी।
0: कोई बोबो भैन है करें?
1: कोई भी नहीं, मैं तो एक रिड़जर बैठा, बस खड्डा नजारा देखा ही।
0: अच्छा जी, आज तो बड़ी भारी बारिश हुई,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: तो
1: बिल्कुल
0: ये ना
1: बारिश हुई, मैं
0: कार्यक्रम
1: ग्रां च
0: एक
1: बोला भाई।
0: कार्यक्रम साड़ी है ना बोबो भैणा
1: हाँ
0: वास्ते, जे
1: जी
0: कोई है
1: हाँ
0: बखें
1: जी,
0: तो करवाई
1: हाँ
0: दिया
1: मैं
0: गल।
1: थोड़ा सा सारा सब सुनता रही मैं।
0: अच्छा जी
1: हाँ जी, बरसात के बारे दस्ता कर दे, सब सुना है कहानी बारे च।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: चलो ठीक है जी,
0: धन्यवाद जी। दहो ना तो दसी दिया,
1: अनिल कुमार जी।
0: चलो धन्यवाद थोड़ा, चलो गलतियां ने जुड़ी है तो हाँ, तो कोई गल नहीं कोई गल नहीं। कार्यक्रम मिंजरा इस वेला साड़ियाँ बोबो भैणा सुना दियाँ आकाशवाणी धर्मशाला ते, कने अज अहाँ गलबात करा दे जिहड़े बरसाती पक्षी बैठदे नदिया दे कंढे कुरल कुरलाणी, तिन्हां दे उपर अहाँ अज गलबात करा दे। तां गलबात जिहड़ी है सै जारी है। हैलो बोबो भैनों, जैलू तुहां फोन करी दियां ना तो फटाफट गल करी लिया करा, क्योंकि टाइम बड़ा घट हुंदा साढ़े वल।
1: हेलो,
0: हैलो
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्ते जी, अपना नाम दसी दिया कने अपने ग्राएं दा भी नाम दसी दिया।
1: मेरा नाम राखी मैम, मैं कछियारी से बोला दी।
0: कांगड़ा कछियारी ते?
1: हाँ जी,
0: अच्छा जी, तां तुहां सुनिया अज कुछ विषय पर अहां गलबात करा दे?
1: हाँ जी मैम, सुने
0: अच्छा जी, तो क्या बोलना चाहेंगे इस विषय पर?
1: मैम, क्या बोलना है ये कि इस टाइम कुरला बैठे, आज लास्ट है, कल फिर कुरली है, मैं ना है कने
0: बिल्कुल
1: कल संग्रांत है,
0: हाँ जी,
1: जोड़ू पत्रोड़ू आदि।
0: क्या बात है। वैसे यहाँ पिछली बारी यही टॉपिक लिया हाँ, बड़ी खुशी होंगी जालू साड़ियाँ बोबो पहना, क्योंकि दिखा ना साड़े बुजुर्ग बोलते थे कि घरे च अगर एक महिला यो पता है ना तो
1: हाँ
0: एक
1: जी
0: महिला पूरे परिवार यो जोड़ी के रख दी, तो मनी लिया कि घरे च अगर अहाँ 6 मेंबर हैं या 10 या 11 या 8 या 7 या 2 या 3 या 4 जितने भी हैं, तत्तिना सारियां से जानकारी जेड़ी है सै साझा कर दी, है ना। करे चाह गपशप तो मार दे या मार दे कि नहीं मार दे,
1: मार दे मैम, मार दे।
0: हाँ तो दिखा एक महिला जेड़ी है सै कितने बंदे हैं जेड़ा ऐसा करे च जागरूक करी, है ना।
1: हाँ जी
0: तो हूँ मुझे ये दसा भी जी कुरल कुर लैनी बैठे हो तो इसके बाद बरसात रही कि नहीं रही,
1: नहीं रहती मैम, इसके बाद ये लास्ट की बरसात हो गई है।
0: है ना जी।
1: हाँ
0: मैं
1: जी
0: इस तरह पूछा दी ना, हो सकता अहाँ को तू भी दे बड़े बारी जानकार होंगे अहाँ भी इं दिखी सीखी के ही काम कर दे ना, तो हो
1: हाँ
0: सकता
1: जी
0: साढ़े ते कुछ छुट्टी है तो साड़ी जिहड़ी महिला सखियां ने साड़ियां जिहड़ियां बोबो भैणां ने सह हाँ जो दसी सकदियां, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक
1: हाँ
0: है।
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: मैं
1: जी
0: सोचा कुछ मैं गलती ना ना गला दी हूँ,

0: हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, अपना नाम दसा।
1: राम राम मैडम जी।
0: राम राम जी, नमस्ते जी। और क्या हाल चाल है थोड़े?
1: बस जी ठीक।
0: ठीक है ना? विषय सुनिया तुसा?
1: हाँ जी।
0: विषय सुनिया जिस पर आज अहां गल बात करा दे?
1: हाँ जी।
0: क्या बोलना चाहेंगे तुहां इस विषय च? विषय ठीक लिया अहां कि नहीं?
1: हाँ जी मैडम जी ठीक है।
0: ठीक है, जानकारी होना चाहिए ना सांझो सारे आए हो।
1: हाँ जी।
0: तो क्या बोलना चाहेंगे? कौन बैठिया पहले कने, या कौन बैठदा पहले कने, कौन ही बैठना कल?
1: मैडम जी कुरले उठी आगना कुरली के भी आना।
0: क्या बात है, पता है मेरी ये वो बोयो है ना?
1: हाँ जी।
0: ना क्या दसिया तुहां अपना?
1: नीत बोले मैडम जी खुंडियां ते।
0: खुंडियां ते?
1: हाँ जी।
0: क्या बात है, चलो बड़ी अच्छी गल है। ता क्या सेवा करदा जालू कुरल बहंदा ता कुरली क्या सेवा करदी दीदी?
1: मतलब जी है की बात ना तो जी ना दुए खाने लोना दुए गाना ते दुए खाने लोना।
0: बिल्कुल, वैसे बोल दे कि जैसिंगपुर साइड जिहड़ी व्यास नदी है ना, तिथु मतलब साढ़े बुजुर्ग सुनांदे थे कि जल्लू अहां नौना पर जियां पहले तो बाई बूई ते पानी भरदे है ना, हुण भी भरदे, भरने वाले नैचुरल जितने भी साढ़े स्रोत है नहीं दे पानी है दे, तो बोलते भी प्यागा जल्लू जाते हे पानी भरना, तो तिथु मतलब जिस रुखे पर से बहंदे बोलते तो तिथु ना मच्छी पी होंदी ही, ब्यासा कंड है ना रुख था, तो ये मतलब इं नहीं सुनी सुनाई नहीं है, दिखियो भी है लोगों। तो कल सगरांद भी है ना जी, तो कले तो फिर 8 दिन बचे कने फिर बरसात लगभग खत्म है ना जी। और कौन कौन कार्यक्रम सुन दे तुहां धर्मशाला दे? अच्छा, अच्छे लगते सारे कार्यक्रम? सिर्फ गीत गूत ही सुन दे कि जेड़े और भी जानकारियां दें दे हां तिना ही भी सुन दे?
1: नहीं मैडम जी जानकारियां सुन दी गीत भी सुन दी।
0: आपू तक ही रख दे लसियाड़े ही है।

गांव भी बधांदे जानकारी है। हाँ लस्याड़ा नहीं बनना, स्याणे बोलदे ना भी लस्याड़ा बारे ते बड़ा छैल हुंदा भी हरा भरा, कने अंदरे ते दिखे अंदर कीड़ा निकलदा जालू तुसी फाड़दे ता निकलदा ना। खाद्यो लस्याड़े कदी खाद्यो? तां जो पता होना भी बिच कीड़ा हुंदा ते इस च है ना। चलो बड़ा अच्छा लग्या कि तुहां इतनी दूरे ते साढ़े कन्ने जुड़े, कने टाइम कड्ढी के तुहां फोन किया, तिस तईं तुहाड़ा मता मता धन्यवाद। इं जुड़े रहे आकाशवाणी धर्मशाला कन्ने।

0: you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza. Now available with the exciting Turbo Booster Jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats. New 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of 7.39 lakh rupees. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
1: Step into the world of Nexa.
2: Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: This monsoon season, make every drive feel smoother and every journey special.
2: Presenting the bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety.
1: Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags.
2: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
1: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today.
1: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
3: Nexa.
4: इन्हां मशहूरियां ते बाद फिरी ते आह अपनिया बोबो पैणा दा न्याणियां स्याणियां दा बुजुर्गां दा लोकियां पाऊ पैणा दा फिरी ते स्वागत करदे मिंजरा कार्यक्रम च जिहड़ा कि महिला वास्तै विशेष कार्यक्रम है। कने इस च जुड़ने ताईं साड़ियां जिहड़ियां बोबो पैणा न तिन्हां करना पौना डायल नंबर साढ़े स्टूडियो दा जिहड़ा कि है 0189224391। कने इंडिया च अगर अहां गल करिए तां ए है 0189224391। तां इस पर तुहां फोन करना कने जुड़ना साढ़े कन्नै। कने अज अहां अपनियां बोबो भैणां दस्सी दिए कि अज अहां गल्लबात करा दे कैस पर कुरल कुरलाणियां पर, जिहड़ा कि बरसाती दे दिनां च बड़ा मतलब कि एक किस्म दा इंतजार रहिंदा। कने ये जेड़े 16 दिन होंदे इन्हां 16 दिनां च अहां पता नहीं कितनियां सुखना सरीणियां करी हिड़दे कि भगवान जी चौनी पासै सुख शांति रहि कहि कि जैलू ये दोनों पक्षी बहिंदे तां क्या हुंदा कि भारी बारिश हुंदी। भारी बारिश कन्नै मतलब कि जिसका पार नहीं पाई सकते, तो हाँ दिन रात बरखा लगी हो रही। अगर एक पक्ष शांत रहे तो दूआ पक्ष जेड़ा है सै बड़ा क्रोधित रहा। ये जेडे साढ़े अहां बजुर्गों ते सुनिया गल्लां न, कन्नै दिखने च भी आउंदियां कन्नै तुहां दिखा दे भी हैं, तां इहदे बारे च अज अहां गल्लबात करा दे। हैलो
5: नमस्ते
4: जी, मैं ज्योत्सना पठानिया पठानकोट से। जी जी, तो नियमित श्रोता ने कने वो बुजी यहाँ पंचायत नहीं लिया तो अंजो।
5: मैं ये कहना चाहती हूँ कि YouTube पे
4: पाड़िया चिगला पाड़िया चिगला पाड़िया च
5: नहीं बोल पाऊंगी।
4: कोशिश करा ना, कोशिश करा।
5: मैं पहले
4: प्रैक्टिस
5: करूंगी ना, पहले आप वास में रहते हैं, ये लोक मान्यता है और ये तपस्या करते हैं, और जब तबाही होती है तो कुरल बैठा हुआ होता है।
4: हाँ जी।
5: और जब कुरलैनी उसकी सेवा करती है, सिर्फ मछली खाते हैं।
4: हाँ जी।
5: जो पुराने एरियाज हैं ब्यास के, वो जहाँ पे वहाँ से लोगों को उठा दिया, तो पोंग डैम वगैरह जहाँ पे पानी होता है, मछली होती है, वहीं पे ये किसी को दिखते नहीं है, लेकिन कहा जाता है अगर दोनों एक साथ ना बैठे तो फसल अच्छी नहीं होती है।
4: हाँ जी, ये तो हाँ सर्च कितना मुझे लगता,
5: मतलब दोनों को बारी बारी तबाही और सूखा दोनों की मतलब
4: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ये जानकारी जीडी एस है थोड़ी बिल्कुल सही है। दुसदे नहीं, पर मैं तो अंजू जी ये पहले भी गलाया ना कि दुसदी सिर्फ मछली है, ऐसे भी इस तरह दुसदी कि ये प्रमाण दे के जाते कि हाँ बैठे हो ना, दुसदे नहीं है, ठीक है। पर ए मतलब कि शुरू ते

0: हाँ जी हाँ जी, ताकि विश्वास हो जाए। और ये तो हमारे मतलब कि देखने की बात है, बचपने से देखते आ रहे हैं ना जी। तो तुहाड़े कन्ने मैं भी लगी पे हिंदी बोलना।
1: कोई बात नहीं जी।
0: चलो ज्योत्सना जी, तुहां जुड़े कन्ने बड़ी अच्छी जानकारी जिहड़ी तुहां रखी होती से साढ़े कन्ने साझा कीती, कन्ने बाकी श्रोता सखियां भी तुहाड़ी ये गलबात सुनी होनी। तो ये बिल्कुल ठीक है कि बोलदे भी जालू।
1: हाँ जी, कहा जाता है नीले रंग का होता है, उसका जो मेल है ये नीला होता है और जो फीमेल है शायद ब्राउन होती है। मतलब ऐसा मैं बिलीव करती हूँ कि पंख अगर किसी को मिले या पर मिले तो मतलब बहुत शुभ माना जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, पर बोलिया तिजो मारा बाग, बोलिया खुंडे ते इल्क गा तालू। गलाने दा मतलब ये है कि मिलने ता तान है जे सटी के जान। ये अपनी बड़ी घट मतलब वो देख के जान दे, सिर्फ मछली ते पता लगदा कि रात बैठे हो थे मतलब वे
1: हाँ जी, ये तो
0: ए।
1: ठीक है जी।
0: ता बाकी जुड़ने तीन थोड़ा मता मता धन्यवाद। कने अज तुसा इस कार्यक्रम च जुड़े जितनी भी साड़ियां बोबो भैणा अज जुड़ा दियां, कार्यक्रम जो सफल बना दियां, तिन्हां दा हां कन्ने कन्ने मता मता धन्यवाद जेहड़े हैं सै करदे जा दे। कन्ने इयां जुड़े रहा, कन्ने इयां सुनदे रहा आकाशवाणी धर्मशाला। जुड़ने ते इयां धन्यवाद। तो दिखा जी मेरी ओ बोबो भैनों भी, हुण टाइम जेहड़ा सै बड़ा घट रही आ, पर बड़ा अच्छा लगा दा कि साड़िया मतलब सारिया जगह ये जेहड़े साड़े श्रोता सखी जुड़े पठानकोट ते हैं, कन्ने दिखा सारे इस चीज़ा दी जानकारी रखते हैं कि ये 16 दिन जेहड़े होंदे सै भरपूर बरसात होंगी, मतलब नचोड़ है बरसाती दा, है ना जी। हेलो हेलो जी,
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कुथू ते बोला दे, ग्राएं दा नां दसा, अपना भी नां दसा।
1: देखिए मैं बोल रही हूँ नूरपुर से, मेरा गांव है सुलियाली।
0: सुलियाली ते ता पहाड़ी पूड़ी गलाना आंदी तंजो?
1: पारी आंधी थी है पर इतनी ज्यादा नहीं।
0: नूरपुरी गलाई दिया, आहनी
1: हाँ
0: बुरा
1: जी
0: बनाना।
1: हाँ
0: ता क्या गलाना चाहेंगे आज दे इस कार्यक्रम च?
1: असि तुहाडे प्रोग्राम ते सारे सुनदे हां, जैसे सुबह 6 बजे प्रोग्राम शुरू होते हैं ना,
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: मेरे सुबह ही शुरू हो जाता है मेरा रेडियो।
0: चलो बड़ी अच्छी गल है।
1: और मैं वर्किंग लेडी हूँ, स्कूल चली जाती हूँ, पीछे से चलता ही रहता है और फिर वापस आती हूँ, मेरा रेडियो चल ही रहता है।
0: बड़ी
1: इसलिए
0: अच्छी
1: मेरे को
0: गल है।
1: इतना लगाव है रेडियो के प्रोग्राम से, खास करके धर्मशाला वाले।
0: नहीं तो तेज कुथी ना कुथी तो साड़ा भी तो हाथ है ना, हाँ दिखा कितनी मेहनत करी के इतनी जानकारियां थोड़े तक
1: बिल्कुल
0: पहुंचांदे,
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: थोड़ी आवाज बड़ी स्वीट लगती है मेरी।
0: अरे बड़ा बड़ा धन्यवाद थोड़ा, पर इं चने दे झाड़ पर तो नहीं चढ़ा दे मिंजो तो। हाँ
1: बिल्कुल नहीं,
0: चलो मिंजो बड़ा अच्छा लग्या, पर कुरल कुरलानियाँ पर क्या बोलना चाहेंगे तो? हाँ
1: कुरल कुरलानिया। मैं एक्चुअली आज ही सुनिया तो डायवला पक्षी का नाम।
0: अच्छा जी,
1: मेरा जेड़ा रिलेशन है ज्यादातर पंजाब कन्या, जैसे पठानकोट मेरी स्टडी हुई
0: हाँ जी,
1: और जम्मू कश्मीर च मेरी मैरिज हुई, तो मेरा ज्यादा इधर कन्या हिमाचल कन्या ज्यादा रिलेशन नहीं है। बट जो दी मेरी जॉब लगी हुई है उन्हें हिमाचल कन्या रिलेशन हुआ, पर कुरल कुरलानी मैं पहली बार सुनिया और वो जानकारी ऐसे हासिल कर ली है कि
0: अच्छा जी,
1: कैसे होता है संग्रांत, जो आपने बताया
0: हाँ जी हाँ जी।
1: पहले 8 दिन पहले वो जो
0: तो
1: मेल
0: ऊनी
1: होता है
0: करना
1: फीमेल
0: भी
1: का।
0: ये जानकारी, क्योंकि टाइम होना साढ़े अल सिर्फ 1.5 मिनट रही है ना, तो
1: ओके
0: ये
1: जी,
0: करना कि 8 दिन कुरल बंदा कने 8 दिन जड़ी है से कुरलानी बंदी, ठीक है जी। तो
1: ठीक है
0: ये
1: जी,
0: जानकारी हूँ तो हाँ अपने तक नहीं रखनी, अपने घरे च भी साझा करनी, जम्मू भी करनी कने नूरपुर भी कने जित्थू जित्थू तुहाड़ी रिश्तेदारी है ते ना सारे ये जानकारी देनी, ठीक है जी।
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: बिल्कुल,
0: मेन बरसात जिहड़ी है सै इन्हां 16 दिनां च हुंदी, कने ये 16 दिन ही डिसाइड कर दे पूरा साल जिहड़ा हुंदा,
1: ओके
0: ठीक
1: जी।
0: है जी।
1: हाँ जी,
0: कने तुहां
1: अच्छा है
0: ना,
1: जी,
0: हाँ जी,
1: हाँ जानकारी देंगे। आपका नाम?
0: मेरा नाम वर्षा कटोच, कने मैं
1: ओके
0: तुहाड़ी
1: ओके,
0: बड़की बोबो, कने ये
1: अच्छा
0: जानकारी तुहां गठी बन नहीं लिया, कने अगली बारी जालू तुहां जुड़ना तो मैं पूछना जरूर है, ठीक है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तुहां
1: जी।
0: ना क्या दसे अपना?
1: मेरा नाम है कुसुम जसरोटिया।
0: कुसुम जसरोटिया जी, कार्यक्रम च जुड़ने ते ये मिंजरा कार्यक्रम है, इस च तुहाड़ा जुड़ना जेड़ा है सै बड़ा अच्छा लग्या सांजो, कने मता मता धन्यवाद, उन टाइम बड़ा घट है साढ़े वल, ठीक है जी,
1: ठीक है जी, बहुत बहुत
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: जुड़ने ते
1: आपका
0: ये।
1: भी।
0: तो जो सारे ने दसी दिए भी इस कार्यक्रम दे प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतिंदर पाल सिंह कने प्रस्त

0: जिहड़ा तकनीकी सहयोग दिता सह दिता विकास पठानिया ने हूँ अपनी बड़की बोबो जो आग्या दिया। राम राम जी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को है और पहले हिंदी में समाचार व शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
2: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
1: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पूंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पूंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेमा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेमा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थियों लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉ. पेमा सानी और जिलाधिकारी साई कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौता पर हस्ताक्षर भी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कंठनकुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। उपराष्ट्रपति ने 2014 के बाद से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के विस्तार और उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। गोल में भारत ने श्रीलंका

0: के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: खेतीबाड़ी सुनने वाले सारे हैं, किसान कन्नै बागवान भाइयां जो जोधा राम दी राम राम। किसान साथियों टैली विच अज मेरे कन्नै बड़े दिनों बाद मिलने मारे किसान मित्र भाई, तवंजो जी राम राम।
1: राम राम जोधा राम जी, राम राम सारे सुनने वाले किसान बागवान सारे श्रोतियों का हाँ टियाले पर कार्यक्रम के विच स्वागत करते हैं।
0: हाँ कहने किसान मित्र भाई, दिखा तुम तो टियाले च घट ही रहते है ना, तुम तो रहते बार बार जाए करी है ना जी।
1: हाँ देखा भाई जोधा राम जी, गल इं है ना
0: हाँ जी
1: कि मुझे देखा कि घूमने फिरने का बड़ा शौक, घुमकड़ी करने का ना,
0: हाँ बिल्कुल।
1: कहना जी कोई जानकारी भी मिलती तो तसे भी हाँ अपने झोलू जो पा लेंदे
0: हाँ
1: ना।
0: मैं तो सुनया कि चल जानकारी नहीं लेंदे तो भी तुम घर के बाद इं निकली जाते वे रेहड़ी रेहड़ियाँ घूमते रहते जाए करी,
1: हाँ
0: चिल कैठियां भी बीनते रहते, कहना मशरूम भी घर आते रहते देसी
1: बिल्कुल
0: जरा
1: हाँ
0: जंगली मशरूम होंगे है ना
1: हाँ
0: जी
1: देखा कहना
0: बत मोरे।
1: ये तो जड़ा सा हूँ समा लग गया मशरूम निकला कर दी जंगलों में है
0: हाँ
1: ना।
0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: कहना तुम्हारे घर वेखा जंगल भी बड़े वारियां पाई है ना
1: हाँ
0: जी,
1: जी हाँ
0: कहना मन इं भी लगी रहा
1: बिल्कुल
0: है ना जी,
1: हाँ
0: कहना इं भी तुम किसान भाइयों ने मिलते रहते तरह तरह की जानकारियां इतने टियाले से तुम जरा सह देंदे रहते, कहना हाँ
1: बिल्कुल
0: कहना हाँ
1: हाँ
0: दे किसान भाई सुनते रहते
1: हाँ
0: तो।
1: देखा बरसात का ही मौसम है ना कहना इन्हें दिन देखा अहाँ दे किसान साथी अहाँ दे बागवान हुई है, देखा बरखा ची सारे काम कमाना पौंदे है ना,
0: हाँ बिल्कुल।
1: डंगरे भी चारना पौंदे, बकरियां चगानियां, कने सिज्जी भी याद इस होगी संजे आंदी वरी लकड़ूआं दा परोठो भी लियो आदे बन्नी के ना।
0: सब ते खरी गल, पर अजकल बरसाती लकड़ू बालना बड़े बड़ी मुश्किल पई है ना जी,
1: हाँ
0: ये तो सकेरी करी घर रखना पौंदे घर अंदर रखना पौंदे है ना जी,
1: हाँ बिल्कुल
0: तां
1: हाँ
0: खुद की जाके बलदी है, कहना तां खुद की चुल्ली दा फुलकू खाने मिलता है,
1: हाँ
0: ये
1: बिल्कुल
0: तां अजकल बोलते कि चुल्ली दा फुलकू खाने भी खुश नसीब वाले मिलता है ना जी।
1: बिल्कुल हाँ देख अग बालना दी तो हाँ ठीक बोला जी, अजकल बड़ी
0: हाँ
1: थोड़ी करड़ा काम हो जाता है ना,
0: हाँ
1: कने बार बार जी असें अगर हाँ बल छोटे अगर बरीक बरीक पतलियां लकड़ियां नहीं होंदा बोलते ना कि थोड़े पतले लकड़ू भी लियो अग बालने हैं ना।
0: हाँ पतले लकड़ू चाहिए जी अजकल का, तुम जी गावतरा भी तुम सिन्ना चुका सुका चुका सभी सिन्ना होंगे है ना जी,
1: हाँ
0: सभी सुक्का नहीं होंगे, कहना
1: जी
0: थोड़ा जहा अग्गी बालनी मुश्किल तो रही रही है ना जी।
1: जी हाँ
0: कहना देखा
1: जी
0: जी कि अहाँ के किसान भाई जानते हैं कि तुम जरा तरह तरह की जानकारियां देंगे है ना जी,
1: हाँ जी
0: तो किसान भाई अजय जानना चाहते कि सांसद आदर्श ग्राम योजना ऐसा क्या है, कहना इस बारे में क्या क्या मतलब होंगे।
1: हाँ देखा भाई योजना ते पता लगा करदा कि अहाँ दे जितने भी सांसद हैं ना, सांसद आदर्श ग्राम योजना है ना, इस बीच जड़ा सा एक जड़ी सोचने वाली गल ये है कि इस बीच जड़ा सा एक एक ग्राम जड़ा सा जड़े सांसद हैं ना गोद लेना है ना, गोद लेने का मतलब ये है कि तिना तीसी ग्राएं बीच पूरा ही सा विकास करवाना जड़ी है कि अहाँ दियाँ मूलभूत जड़ी सा जरूरत होंगे ना।
0: बिल्कुल जी
1: हाँ इस बीच जियां आई अहाँ दी बिजली होई पानी होई अच्छे बढ़िया स्कूल होई सड़क होई स्वास्थ्य होई हर चौराहे गली मोहल्ले च जियां स्ट्रीट लाइटां होई बैठने वास्ते जियां बेंच पार्क होई
0: हाँ जी
1: खेलने ताईं जेड़े सा जिम होई यानी कि तां जेड़ा सा एक आदर्श ग्रां जेड़ा सा बनना है ना।
0: बिल्कुल जी सही दस्या, कहना सांसद अपने इलाके में जो ऐसा है तो दस्या कि गोद लेंदा है, जी पानी की हुई है स्वच्छता हुई है सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं जो से दिंदे ने, पर
1: हाँ
0: तिना मूलभूत सुविधा जरा सा अगर सू मिली है ना तो तिना जो सही ढंग ने रखना जरा सा नागरिका का ही फर्ज
1: बिल्कुल हाँ
0: है ना जी।
1: जी
0: सड़क बनी ही है,
1: हाँ
0: पानी अगर लगी पिया होना आखे पखे कुल्ला च है ना जी, तो
1: जी
0: कुल्ला च जरा सा कुल्ला का रख रखाव रखना हमारी जिम्मेवारी, कुल्ला च
1: हाँ
0: गंद नहीं पाना हमारी जिम्मेवारी
1: हाँ
0: है ना
1: बिल्कुल
0: जी।
1: देखा जी यहाँ दे किसान साथी है ना, देखा जी कुल्ला ते गल चल रही है तो कुल्ला दी साफ सफाई करना भी अहाँ दा एक नैतिक फर्ज बनता,
0: हाँ जी
1: ऐसा नहीं है कि जी जड़ा भी

0: कूड़ा करकट होया या जड़ा भी जाड़ बसूट होया से जी अपने खेतों से साफ किया घोला च पाईता ऐसा नहीं करना ना।
1: बिल्कुल जी। तो इस तरीके ने जो ऐसा अगर मतलब कोई रोजगार का अवसर प्रदान करी भी दिता
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: इस विच जड़ा ऐसा संजो भागीदारी भी जरा सा लेना पौनी
0: बिल्कुल
1: है जी।
0: हाँ
1: कने पंचायत जाई करी जरा ऐसा संजो कोरमच भी जाना पौना पंचा प्रधान जी पूछना भी पौना फिर बाद हाँ बोलते भाई ये अपने हिसाब ने कम कर दे भाई इतना करना ही है जलों ऐसा पूछना ही नहीं
0: हाँ
1: जलों हाँ तुने पूछ गए कि हाँ ग्राएं क्या क्या योजना आई कने किस तरीके का कम हुआ देना जी
0: जी
1: इस तरीके ने कि सारे ग्राएं का भला हो सब ना जो जरा सा जागरूक रहने की जरा सा जरूरत रहती
0: जी
1: किसी भी योजना की जानकारी लेनी है तो अस पहले जरा जागरूक रहना जरूरी है
0: हाँ
1: असा अगर जागरूक होंगे ना तो ही जरा इन चीज़ों का सारिया का फायदा ले सकते
0: ले सकते हाँ देखा जी इस सांसद आदर्श ग्राम योजना जी गल हुई ना सड़क की देखा जलू हर एक ग्राएं बच्चे सड़क पुजनियाँ हर एक जड़ा सा घर सड़क ने जुड़ना तो अह के किसान साथियों जो अपना उत्पादन मंडी तक ले जाने भी जड़ी सह बड़ी आसानी होनी है ना
1: बिल्कुल जी
0: करना दिखा जालू तिना दा उत्पादन जड़ा सा जल्द से जल्द जलू मंडी बिच पुजना है तिने अच्छे दाम मिलने हैं कने जिस जो हाँ बोलते हैं कि घर बैठे ही अहां दे ग्राएं बिच जड़ी से सारी सुविधा अहां जो इस योजना के तहत मिलनी है।
1: बिल्कुल जी। तो इसके बाद जड़ा ऐसा किसान मित्र जी दिखा
0: जी
1: गलबात भी हुई है किसान भाई ने जानकारी भी दी थी कहना जरा सा बरसात हाली तक गई नहीं है
0: हाँ
1: कहना बरसे सब बरसाती है जरा सा हाली भी बच के रहने की जरूरत है कि सियाने बोलते उन बरसात कहना जानती बरसात कुछ ना कुछ करती होंगी है तो हूँ
0: हाँ
1: जानती बरसात है तो जरूर जरा सा खड्डा नालों में दूर रहा।
0: बिल्कुल दूर रहना
1: हाँ
0: हाँ देखो पिल जड़ा सा पानी आई जाता ना
1: बिल्कुल जी
0: इन्हें दिनों देखा जी कुछ ग्रां च कोई नौजवान साथी होइए जो कुछ जी कोई मछली वगैरह पकड़ना भी चली जाते
1: हाँ
0: हैं
1: बिल्कुल जी
0: तो जी ने कि बीड़ियाँ लगाते लगाते पिल उपर से पानी आई या
1: हाँ
0: कहना कोई ऐसी जड़ी से घटना ना घटिया है ना
1: बिल्कुल जी
0: तो बिल्कुल ध्यान ज रखी कि अपना जड़ा सा कहना अपने पशु धन का अपने सारे खेती के काम जड़ा सा बिल्कुल सूझबूझ कन्नै पूरी एक समझदारी कन्नै कमाने न
1: बिल्कुल जी कहना पौधारोपण जरा ऐसा बरसाती जरा सा जरूर करना इससे भी
0: जी
1: सानू जरा सा फायदा होना आने वाले पीढ़ियों जो फायदा होना कहने
0: बिल्कुल
1: इसके बाद किसान मित्र जी असा सुनना ट्याले बिच ए लोक गीत
0: जी।

0: अपने अपने हिसाब से होना कुदा करने ऊपर होना
1: कई मिल जंदा पूज कई बारी
0: हां
1: तमे बिछावण अपने माले जप्पू है ना
0: अच्छा तिया टीका करण वगैरह भी करवाना पोंदा भेड़ा बकरियां तो हां भी करवांदे
1: करवांदे
0: अच्छा तो इथु करी जंदे सा जितने
1: तू बुला लेंदे सा फिर इन्नी डॉक्टर डॉक्टर सद्दी करी तू आ लेंदे कैंप कुंप लगे होंदा
0: एक तो हां दे इथु तारकंडी चिकदा की भेड़ा नवाणे वाला भी है बण्या जिसे सा दवाई वगैरह पांदे से अच्छा रिड कुमार है ना ते तू साले साल से खुला रहंदा है की
1: एक महीना लगदा हुन लगना सैर जांदी कने एक
0: जल ताना जल की चंबे दे उतरने न ता कना चढ़दी बारी ये भी से तितु जन की अपना माल नहलाना धुलाना कना ताकि ये बीमारी जड़ी से तितु ही कंट्रोल हो जा ना आगे नहीं जा ना उत्तम जी इदे सोगी साले दी कितनी बारी जिया माले तो हां बेच दे जिया पशु जिया रखे हुंदा दिखाए
1: बेचन तो कर्ज लगी पर एक बेच लेनी एक आलू बेच ले एक तो मसाले ने तो इन्या ही कर्ज हो साले दो बार
0: अच्छा जेंगी जल जरूरत हो आलू बेचती है दिखा अपना काम है
1: ना जरूरी नहीं और करनी तो करना पे खत्या
0: अच्छा ये साले इकट्ठा नहीं है ना
1: चिट्टी
0: है लाल कने एक और खास गल मैं देखी धारकंडी इलाके हां जी मैदानी इलाका देखे ना इतु अजकल छली बड़ी बीमारियां चली है ना दिखा ये तू कुदरत दा दित्ते सब कुछ है धारकंडी जेड़ी छली है बिल्कुल बंपर फसल पर चली है गुड़ाई करते तो हां
1: गुड़ाई करते
0: कितने गुड़ दें
1: दो बारी करने के ही नहीं थे, एक बारी करनी करनी
0: अच्छा बाकी इस इलाके च पानी की कोई कमी नहीं है ना
1: पानी बहुत
0: बरखा भरी है सारा है
1: ना
0: धान लगाए धान कौन लगाते मैल वगैरा क्या पांदे खेतरां विच
1: डंगरां दे पांदे बकरियां दे पांदे
0: अच्छा बाकी यूरिया वगैरा नहीं है ना
1: सै कुछ की है उन्दा नहीं
0: बड़ा घट है ना देखा बड़ी अच्छी गल है देखा कि इना देना आज दिन हाँ अंधाधुंध दवाइयां छिड़काव करा करते अपने खेतर में है ना हाँ यानी कि जहर खाने तो वधिया कि थोड़ा अनाज खाइए लेकिन एक सुथरा अनाज खाइए बांका होया ना माल बच्छू क्या क्या पाले भेड़ा के अलावा और घर
1: अच्छा
0: दांद पाले हो ना जी उत्तम जी इसके बाद गल करते जी तुम दस्या कि एक तो हाँ आपू कने सहयोगी रखियो माले बछू चारने
1: भेड़ा
0: जो क्या तनखा दें महीने
1: महीने 15,000
0: अच्छा 15,000 देनी है ना बाकी जिन्हें रहने का तो वाली है
1: खान खर्च सब मेरा
0: अच्छा रोटी तुहां दा ही सारा है ना बाकी जियां फिर ते मुड़ के चलदे ने तेसी बहां ता तेतु ते ना सोगी जियां कोई कुत्ते वगैरह भी पाले होने दाने
1: कुत्ते पाले
0: अच्छा
1: जानवर
0: नहीं है इतनी दूर बाणा में रहना था क्या क्या तो जानवर डर रहंदा जियां
1: माल मेरे की सब कुछ है
0: अच्छा बाघ होंदे है ना जियां तुहां दस्या कि 40 साल दे अनुभव च कदी आमना सामना नहीं होया पालू वे करना
1: कई बार ही होया पालू
0: अच्छा
1: और जंगला च रहना कई बार
0: दिने की राती
1: राती भी दिने भी कई बार
0: अच्छा पालू जी यानी कि ज्यादा हमला राती करदा ना
1: दिने सुन करी बंदा जे सुनिए मिलने को
0: अच्छा
1: बंदा ना होगी
0: अच्छा यानी कि तो हां अपने अनुभव जे ऐसा भी कभी दिखे होना कि जिने की बकरी पकड़ ली या भेड़
1: बकरी छुड़ गई है कई बार और
0: अच्छा तो यानी कि डर नहीं लगता
1: डर तो लगदा ना तो करनी है खाना दई है तो फिर हां
0: दिखाए भी बड़ा एक दमियाला दमियाला काम है कि रिछी ते या भाग्य ते उम्मे ते बकरी
1: दुआड़ी दी एक बोक ले गया बड़ वधिया खाई गया
0: बोक क्या अच्छा छेलू है ना
1: छेलू बड़ा बकरा
0: अच्छा नहीं मिल रहा है ना
1: मिल गया खद्दा मिल
0: अच्छा
1: दखाया डिया खरा दादा एक बकरी जींदी चढ़ाई ली
0: अच्छा
1: पकड़ी पकड़ी
0: हां देखा ए थोड़ी थी जिसी यहाँ बोल देना हाँ तो जितने पशु पालक है ना भेड़ पालक है ना तेने थोड़ा दे जड़ा सा चिंता का विषय बनी जाता कि इतनी मेहनत करनी करना जलू अगर पंजा छह महीने जता कि एक दो पैरू भी खाई अड़े तो तिथु जा रही पूरी जड़ी सा आमदनी ही है ना
1: 50,000 तो चोर ले गए चोरी
0: सह कुतु ते
1: उन्ने दे
0: अच्छा
1: 4 साल लगातार ही नीति है 10-10, 12-12
0: इस साल तक नीति
1: है साल तक नीति है पिछले साल नीति
0: अच्छा अच्छा यानी कि जंगली जानवर तो जड़ा सा आदमी का ज्यादा खतरा हो ही है ना
1: ज्यादा खतरा है
0: यानी कि सर 10-12 बकरियां या भेड़ तो खानी ले ये राती है कि
1: राती
0: कि ड्राई तो मकाई के ले ये
1: रात ड्राई में ढाई भी ले जा दे कई यानी सारी राती नीति पता नहीं लगना
0: जे तो सोई रहे होने ना
1: सोई भी रहते थके रास्ते दे कोई दो ऐसी चीज देना छिड़का देंगे पता नहीं क्या करते कोई कुत्ते
0: तेने बोल अच्छा यानी कि बेहोश कर देना कुछ ऐसा कुछ छिड़काव कर देना ना
1: रात बारह लदी होनी है
0: देखा सुते बंदा तो रही जाना गड्डी देना माल।

0: पजाई देना ना करना ताली दे देना सा बड़ी टुक्की भी हड़े होना कटी ती होना ना
1: ते होना
0: फिर भी आहा तो हां दी जड़ी सा हिम्मत करना जज्बे जो जड़ा सा सलाम कर दे ना कि इतना कुछ सहन करने दे बाद भी जड़ा सा तो हां अपना जड़ा सा ए पारंपरिक जिस यो काम बोल दे ना भेड़ा बकरियां वाला ए रखया है आहा दी जड़ी नौजवान युवा पीढ़ी है उन्हें तो हां क्या स्नेहा देना चाहेंगे कि दिखा देना ते भी जिना दे अपने पुश्तैनी माल ताण है ना ताण दिनों दिन जड़े से घटा दे है ना क्या कारण है
1: चार दिन आजकल लोग पढ़ी लिखी गए बकरियों
0: का गांव की जड़ी युवा पीढ़ी है ना तेने क्या बोलना चाहेंगे तो हाँ कि सह अपने माले कि संभालना सह भी
1: सह नहीं संभाल सकते हाँ संभालने
0: अच्छा
1: हम साढ़े मुंडे ने बोलते बेचो नहीं जाना वहां बुढ़े जाना तो बेचनी है पता पानी हो जाए
0: कुल मिलाई के बोली सकते कि अगर तिना वाल अपनी विरासत है हाँ अजकल दे जड़ा जमाना सह थोड़ा आधुनिक हो ही है नौकरी भी जड़ा सह एक जरूरी है लेकिन फिर भी अगर जितना ज्यादा हो सकता सहयोग करावे अपने घर आने का ना
1: नौकरी सारे थोड़ी मिलती कोई मुकद्दर वाले मिलनी
0: खुशी हाँ जी उत्तम जी तो हाँ अपने खेतीबाड़ी अपने भेड़ बकरी पालन के अनुभव अहां कन्ने सांझा किते अपना कीमती समय अहां जो दिता तो बहुत बहुत धन्यवाद
2: तो किसान साथियों दिखा बड़ी अच्छी जानकारी जड़े से असा ली है ना जी
0: जी हाँ जी दिखा कन्ने जल्लू जो राम जी अहां इक्की दुए अहां दे जेड़ी पशु पालक होइए या अहां दे कोई भी किसान है ऐसा जड़ा भी काम करा करदे हैं ना जल्लू अहां तिना दे अनुभव जो सुनदे हैं तो अहां दे अंदर भी एक जड़ी से जिस अहां बोलते ना एक उम्मीद जड़ी से जागती है कि अहां भी कुछ योद्या काम करिए ना
2: बिल्कुल जी जल्लू भी असा दिखदे कि यार ये कर सकदा है तो अस भी कर सकदे
0: बिल्कुल
2: हां जी कन्ने बस असा जो ये दिखना है कि तिन्नी कितनी मेहनत कीती ना तो असों जो भी जो सौ सब ने मेहनत करने की जरूरत होंगी अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से जलवायु के हिसाब ने कई बार असं जो मेहनत ज्यादा या घट करने की जरूरत होंगी लेकिन बिना मेहनत किते हो किसान मित्र जी कुछ भी नहीं मिलता
0: बिल्कुल हाँ कहने देखा इसके बाद जड़ी अगली गल अहां करनी है ना सह करनी देखा भी बरसात जड़ी सह बिल्कुल जिसी अहां बोलते ना कि जोरां पर है
2: हां लेकिन गलबात करने से पहले सुन लेंदे असा ये लोकगीत
0: जी

0: बूटियां लगाने के काम लगी हो ना,
1: हाँ जी
0: तो जड़े भी जी अहाँ के जंगलों में या अहाँ के घर अहाँ के ग्राएं बखे को भी अगर पौधा रोपण वन विभाग द्वारा भी किए जाता था, तो इसी बीच भी हाँ जो सहयोग मिल के करना पौना ना।
1: हाँ जी
0: नहीं तो अहाँ अगर मन गए कि ये तो वन विभाग आने लगाए अहाँ कहे ये संभाल लेन अहाँ इसे रकबे बिच अपने माल बच्छू जो चगाए लेंदे तो ऐसा जड़ से नहीं करना है ना।
1: हाँ जी
0: देखा अगर विभाग द्वारा कोई भी अगर पौधा रोपण अहाँ के ग्राम बिच किए जा करता था तो इसका फायदा अहाँ तो लेना है ना।
1: बिल्कुल जी,
0: हाँ
1: कने बिल्कुल संजू फायदा जरूर मिलना। कने दिखा तुहाड़ी सा गल्ला ते दिखे दिखे टियाले दी घड़ी बोला ते कि जाने दा भी जड़ा सा समय होई है।
0: जी,
1: हाँ जी
0: ता जाने दे पहले दस दईए कि कार्यक्रम दे प्रस्तुत करता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह
1: हाँ जी
0: कने हुण अहां दुनिया दे अनुमति।
1: अच्छा
0: अच्छा जी,
1: जी,
0: जय
1: जय
0: हिंद।
1: हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के, माफ कीजिएगा, साय के 7:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:45 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य न निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के बर्फीले क्षेत्रों में 1 सितंबर से शुरू होगा जनगणना का दूसरा चरण, कल से मिलेगा स्वगणना का विकल्प। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर कर्मचारियों व पेंशनरों की मांगों को अनसुना करने का लगाया आरोप। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। और प्रदेश के 4 जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, विभिन्न जिलों में 109 सड़कें अभी भी अवरुद्ध। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के बर्फीले इलाकों में जनगणना का दूसरा चरण 1 से 30 सितंबर के बीच चलाया जाएगा। इन इलाकों के नागरिकों की सुविधा व आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल 17 अगस्त से 31 अगस्त तक स्वगणना का विकल्प भी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। जनगणना कार्य निदेशक दीपशिखा शर्मा ने संबंधित क्षेत्रों के लोगों से इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया है। जनगणना के दूसरे चरण में प्रत्येक एक व्यक्ति से संबंधित जन सांख्यिकीय, सामाजिक व आर्थिक जानकारी निर्धारित प्रपत्र के अनुसार दर्ज की जाएगी। इस बार जनगणना की प्रक्रिया को डिजिटल तकनीक से संचालित किया जा रहा है, जिससे आंकड़ों के संग्रहण, निगरानी व प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण पर करीब 130 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ठियोग विधानसभा क्षेत्र में आज रिहाली मेले के समापन पर उन्होंने कहा कि शिमला जिला में छैला सैंज नेरी पुल यशवंत नगर सड़क के लिए 239 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के निर्माण के लिए सभी औपचारिकताएँ पूरी की जा रही हैं। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों को अनसुना करने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री झूठे आश्वासन देने के आदि हो चुके हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब राज्य की खराब आर्थिक स्थिति के बहाने अनाथों और विधवाओं के नाम पर पेट्रोल डीजल पर सेस वसूल कर सरकार चलाई जा रही है। प्रदेश भर में कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रदर्शनों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और उनकी चुनावी गारंटियां, बजट घोषणाएं और वायदे केवल कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए 200 रुपये का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त ही है। एनटीए ने उम्मीदवारों से केवल अपनी आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकाल में प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हुई है। नाहन विधानसभा क्षेत्र के कटासन माता मंडल में आज मूलभूत सुविधाओं को लेकर एक प्रदर्शन के दौरान

0: उन्होंने कहा कि करीब 4 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस नेताओं ने जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय अपने लिए सुख सुविधाएं जुटाने का काम किया है। बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के वर्तमान कार्यकाल में भाई भतीजावाद और मित्रवाद को बढ़ावा मिला है, जबकि जनता को समस्याओं के बीच छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली से प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। भाजपा ने आज पालमपुर में जिला स्तरीय पूर्व कर्मचारी सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज विशेष रूप से मौजूद रहे और पूर्व कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकारों ने कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के साथ सकारात्मक निर्णय भी लिए हैं। इस दौरान प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आरोप लगाया कि प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों, युवाओं, व्यापारियों और बागवानों के हितों की अनदेखी की जा रही है।
1: आज हिमाचल प्रदेश जिस दौराहे पर खड़ा हो गया, कर्मचारियों के साथ साथ व्यापारी, बागवान, महिलाएं, आपके पढ़े लिखे हुए बच्चे हैं, आपके परिवार में प्रगतिशील महिलाएं हैं, वो आज दौराहे पर खड़ी होकर के लाचारी की अवस्था में ये कह रही हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश को अपने हाथों से सुंदर ईंटें बना करके जो खूबसूरत बनाया था, आज हमारे हक के ऊपर डाका डाला जा रहा है।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिमला स्थित लोकभवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी दूरदर्शी और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान व्यक्तित्व थे और उनके योगदान से भावी पीढ़ियां निरंतर प्रेरणा लेती रहेंगी। राज्यपाल ने कहा कि एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत को कर वाजपेयी की दूरदर्शी सोच आज भी देश की विकसित भारत की निरंतर यात्रा में अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी ने सत्ता में बने रहने और सरकार को बचाए रखने के लिए कभी भी ईमानदारी व सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सबको साथ लेकर चलने की राजनीति में विश्वास रखते थे और देश के निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाना चाहिए।
2: आज अटल जी की 8वीं पुण्यतिथि है, वो देश के प्रधानमंत्री बने और निश्चित रूप से हिमाचल से उनका एक लगाव था। आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। वो सबको साथ लेकर चलने की राजनीति में विश्वास करते थे, जो आजकल बहुत कम दिखने को मिल रही है।
0: इस दौरान विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी करोड़ों देशवासियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को वाजपेयी की देश के लिए सबसे बड़ी देन बताया।
3: अटल जी का देश के लिए बहुत बड़ा योगदान इस रूप में रहा है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्होंने शुरू की। उस योजना के अंतर्गत पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल आज चौतरफा पहुंचा है ग्रामीण क्षेत्रों, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वजह से। और उनका ये मानना था कि सड़कें अगर गाँव तक पहुँचेगी तो गाँव का विकास होगा। गांव में गरीब आदमी को अपनी फसल, एक किसान को एक अपनी फसल, बागवान को अपनी फसल मार्केट तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। बीमार आदमी को पीठ पर नहीं उठा करके गाड़ी में हॉस्पिटल तक ले जाने की सुविधा मिलेगी।
0: भाजपा विधायक बलवीर वर्मा, शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान और पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस दौरान मौजूद रहे। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव देष्टा ने मोर्चा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से संगठन को और अधिक सक्रिय व मजबूत बनाने का आह्वान किया है। हमीरपुर जिला किसान मोर्चा की आज बड़सर में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा भाजपा की संगठनात्मक ताकत का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में किसान मोर्चा की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में हल्की वर्षा, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। हालांकि

की राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान कुछ जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। कल 17 अगस्त को बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। इस बीच मानसून की वर्षा के चलते प्रदेश में अभी भी 109 सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि 200 से अधिक पेयजल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हैं। इस मानसून सीजन में प्रदेश में अब तक 187 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कांगड़ा जिले के शाहपुर बस अड्डे में करीब 46 लाख रुपए से नया इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। स्थानीय विधायक व उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने चार्जिंग स्टेशन के लिए धन स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इससे शाहपुर में इलेक्ट्रिक बस सेवा को मजबूती मिलेगी और लोगों को पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के बर्फीले क्षेत्रों में 1 सितंबर से शुरू होगा जनगणना का दूसरा चरण, कल से मिलेगा स्वगणना का विकल्प। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर कर्मचारियों व पेंशनरों की मांगों को अनसुना करने का लगाया आरोप। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। और प्रदेश के 4 जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, विभिन्न जिलों में 109 सड़कें अभी भी अवरुद्ध। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, रोजगार समाचार सुनिए। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी कुमार सेन, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार कैच केंद्रों में कैच कार्यकर्ता का एक पद, सहायिका के दो पदों को भरने हेतु केंद्र के फीडिंग एरिया पंचायत स्तर के आधार पर सार्वजनिक सूचना के माध्यम से पात्र आवेदकों से आवेदन 22 अगस्त 2026 तक सादे कागज़ पर आवश्यक दस्तावेजों को साथ में लगाकर आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का ब्यौरा इस प्रकार से हैं। स्वीकृत कैच केंद्र का नाम जहां कैच कार्यकर्ता सहायिका के पद रिक्त हैं, पमलाई, पद का नाम कैच सहायिका के लिए एक पद, पंचायत थानाधार। लाभान्वित होने वाले आवेदक पंचायत स्तर पर, स्वीकृत कैच केंद्र का नाम पमलाई, पद कैच कार्यकर्ता के लिए एक पद, पंचायत थानाधार। फीडिंग एरिया कैच केंद्र आंगनवाड़ी केंद्र पमलाई पोषक गांव पमलाई, फ्रीजिंग सूची में दर्ज परिवार। पलारन, कैच सहायिका के लिए एक पद, पंचायत शोलोटा। फीडिंग एरिया कैच केंद्र आंगनवाड़ी केंद्र पलारन पोषक गांव प्रभुना अडोर्थ प्रादुषा कुई, फ्रीजिंग सूची में दर्ज परिवार। पात्रता संबंधी शर्तें इस प्रकार से हैं। कैच कार्यकर्ता कैच सहायिका के पद के लिए केवल महिला प्रार्थी ही पात्र हैं। प्रार्थी उस गांव या संबंधित गांव की सामान्य महिला निवासी होनी चाहिए जिस कैच केंद्र में पद भरा जाना है। कैच केंद्र के कैच कार्यकर्ता के लिए आवेदक की शिक्षा कम से कम 10.2 तथा सहायिका के पद के लिए 10वीं पास होनी चाहिए। प्रार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। प्रार्थी के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। प्रार्थी को साथ में जो अनिवार्य दस्तावेज संलग्न करने हैं उनमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, परिवार की वार्षिक आय संबंधी प्रमाण पत्र, कैच क्षेत्र की सामान्य निवासी संबंधी प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ी जाति संबंधी प्रमाण पत्र, साक्षात्कार हेतु 24 अगस्त 2026 स्थान कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी कुमार सेन, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश, समय प्रातः 10 बजे पहुंचना सुनिश्चित करें। रोजगार समाचार अभी आपने सुने, हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
4: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति हम लेकर आए हैं आपके लिए अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में गाई ये गज़ल।

अभी आपने सुने अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के युगल स्वरों में गाई ये गजल। अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं हंस राज हंस की आवाज में गाया ये पंजाबी गीत।

0: अभी आपने सुना हंसराज हंस की आवाज़ में गाया ये पंजाबी गीत। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।
1: It's a unisex song.

0: इसी के साथ हमारा आज का सवरस कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 होने को हैं। अब हिम बीट्स कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा।
1: फिल्म संगीत।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम देशकान का।

देशभक्ति गीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6040 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
0: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that

0: Encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology, and sustainable development. These fields will shape the economies and the society's future.
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
2: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखा

0: धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जांच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
2: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित हैं और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में PV सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development projects worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth.

0: Features like 360 degree camera, heads up display and safety through 6 airbags.
1: And now it's yours at an effective price of just 5.79 lakh rupees.
0: Yes, rupees 5.79 lakh. Valid till 31st August.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home the bold Baleno today.
0: Hurry, offer still stocks last. TNC apply.
2: Nexa.
3: कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं प्रमोद चक्रवर्ती जो कि निर्माता निर्देशक हैं उनकी फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने गुरुदत्त के साथ 12 o'clock और जानी वॉकर जैसी सस्पेंस फिल्में और मधुवाला और प्रदीप कुमार के साथ पासपोर्ट जैसी थ्रिलर फिल्में भी निर्देशित की। उन्होंने जुगनू नया जमाना ड्रीम गर्ल और आज़ाद जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को रोमांटिक जोड़ी के रूप में निर्देशित किया।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

श्रोताओं, अगर निर्देशक के रूप में उनकी बात करें तो उनके द्वारा निर्देशित कुछ फिल्में जैसे 12 बजे, संजोग, पासपोर्ट, जिद्दी, लव इन टोक्यो, तुमसे अच्छा कौन है, नया जमाना, वारंट, बारूद, ड्रीम गर्ल, आज़ाद, ज्योति नास्तिक, तीन मूर्ति, जागीर, शत्रु, दीदार, बारूद और जुगनू, ये सारी फिल्में उनके द्वारा निर्देशित हैं। आइए सुनते हैं जुगनू फिल्म का ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसके अंतर्गत आज आपने सुना निर्माता निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किया जाएगा।
1: भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है रानी दुर्गावती पर केंद्रित योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक रानी दुर्गावती। संयोजक हैं पुष्पेंद्र सौरभ और निर्देशक हैं विनोद कुमार।
2: समय 16वीं शताब्दी।

के माहौल के बीच गढ़ा कटंगा शायद एकमात्र ऐसा राज्य था जहां शांति थी, प्रजा खुशहाल थी, समृद्ध थी। गोंडवाना साम्राज्य के महाराज दलपत शाह अपनी पत्नी दुर्गावती, पुत्र वीर नारायण और राजमाता पद्मावती के साथ राजकाज संभाल रहे थे। किंतु समय कभी कभी बड़ा निर्दयी हो जाता है। राजा दलपत शाह अचानक बीमार होकर स्वर्गवासी हो गए। रानी दुर्गावती पर ये वज्रपात से कम न था।

0: रानी जी, राजमाता पद्मावती और राज पुरोहित महेश ठाकुर पधार रहे हैं।
1: पुत्री दुर्गावती, पुत्री दुर्गावती, हमारी प्रसन्नता काल की कुदृष्टि पड़ गई। काल की कुदृष्टि,
2: अपने आप को संभालिए राजमाता।
3: राजमाता, क्षमा चाहता हूं। नगर और समीपवर्ती क्षेत्रों में घोषणा की जा रही है कि महाराज के साथ महारानी दुर्गावती सती होंगी।
0: क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।
4: मैं सती नहीं होंगी। मैंने प्राण और मन से अपने पति को स्वीकार किया था। वो चले गए, किंतु उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का दायित्व अब मेरा है। माँ दुर्गा का दिया हुआ ये अमूल्य जीवन व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। राजमाता, आशीर्वाद दीजिए। आपके पुत्र के बाद अब आपकी दुर्गावती की हर सांस मातृभूमि की रक्षा और सम्मान में समर्पित होगी।
0: पुत्री दुर्गावती।
5: महारानी, महारानी, प्रणाम। राजमाता,
0: क्या बात है दीवान आधार सिंह?
5: क्षमा चाहता हूँ राजमाता, ये सब कुंवर चंद्र शाह के कहने पर किया गया था।
0: चंद्रशाह? बड़े भाई की मृत्यु के बाद कुंवर चंद्रशाह के कुकृत्य का अर्थ समझ आता है हमें। लेकिन उनकी ये मंशा

0: दूसरों को डराने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाता है।
1: जलालुद्दीन ने इस पिंजरे को भेजकर हमें संदेश दिया है कि हम उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। वो हमें सोने के पिंजरे में कैद पंछी बनाना चाहता है।
0: आपने सही अनुमान लगाया है रानी साहिबा।
1: उस मुगलिया दूत को वापस यहां लेकर आओ।
2: जो आज्ञा महारानी। हुक्म महारानी साहिबा।
1: अब आप जा सकते हैं, आपका काम पूरा हो गया। अपने जहां पनाह से कहिएगा कि हम एक स्वतंत्र राज्य हैं, उनके गुलाम नहीं। हां, उनके इस नायाब तोहफे का जवाब हम जल्द से जल्द देंगे।
2: जो हुक्म।
0: महारानी, यदि हम चुप रह गए तो इसे हमारी कायरता समझा जाएगा।
3: वो तो ठीक है, परंतु उत्तर क्या दिया जाए?
1: एक पिंजिना बनवाइए, वो भी शुद्ध सोने का। उसने मुझे पिंजरा भिजवाया है ना, हम उसे कपास धुनने का पिंजना भिजवाएंगे। उसे संदेश देंगे कि बेहतर है कि वो गोंडवाना पर नजर ना डाले, वरना पूरी जिंदगी बैठकर कपास धुनने के अलावा किसी और काम के लायक नहीं बचेगा। गढ़ा पर नजर ना डाले।
3: परंतु सोने का?
1: हाँ, ठीक उतने ही वजन का जितने वजन का उसका पिंजरा है। ना एक

0: शहंशाह हिंदुस्तान, जिल्ले इलाही, जिल्ले सुभानी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज हो रहे हैं। जहां पनाह का इकबाल बुलंद रहे, जहां पनाह, गढ़ा रियासत के मंत्री आधार सिंह आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
1: अंदर ले आओ।
2: प्रणाम।
1: तो तुम हो आधार से?
2: जी हाँ जहांपनाह, छोटी रियासत का एक छोटा सा कारिंदा।
1: बहुत नाम सुना है तुम्हारा।
2: आपने हमारी महारानी जी को एक तोहफा भेजा था, उन्होंने भी आपके लिए ये विशेष उपहार भेजा है।
1: देखे तो इस थाल में है क्या, तोहफा पेश किया जाए।
2: ये
1: क्या है? ये
2: पिंजना है हुजूर, हमारी भाषा में इसे पिंजना कहते हैं। इससे कपास धुनी जाती है सूत तैयार करने से पहले।
1: पिंजना, वो भी सोने का? बीरबल, इस पिंजने का क्या मतलब हुआ?
3: आलीजान, महारानी दुर्गावती का मतलब है कि आप गढ़ा जीतने के मर्दाना ख्वाब छोड़कर स्त्रियों की तरह रुई ढूंढने का काम शुरू करते हैं। एक और अर्थ भी हो सकता है हुजूर।
1: वो क्या?
3: अगर आपने गढ़ा पर हमला किया तो आपको कैद में डाल देंगे। और आलीजा, कैदियों को कपास धुलने का काम दिया जाता है और आपको भी
1: चुरट। लगता है काफी सोना हो गया है गढ़ा रियासत के पास।
2: आपने ठीक कहा शहंशाह, गढ़ा रियासत में सोना भी है और शौर्य भी। हमारा राज्य करेले की तरह है, जो हमें निगलने की कोशिश करेगा उसका गला कड़वाहट से भर जाए।
1: आधार सिंह, जंग के लिए तैयार रहे, जाकर कह देना दुर्गावती से।
2: महारानी दुर्गावती कहिए आलीजा, महारानी दुर्गावती।
1: हाँ हाँ, महारानी दुर्गावती। जा सकते हो तुम। आसफ खान, आसफ खान, जंग की तैयारी की जाए। गढ़ा पर तुरंत चढ़ाई कर, हमें गढ़ा चाहिए। समझे तुम?
4: ऐसा ही होगा जहां पर।

0: महारानी की जय हो।
1: महारानी की जय हो।
2: लौट आए आधार सिंह जी, कैसा लगा हमारा पिंजना जलालुद्दीन को?
0: अकबर गुस्से से पागल हो गया महारानी। खबर मिली है कि उसने सिपह सालार आसफ खां को आदेश दिया है गढ़ा पर हमला करने के लिए। वो निकल चुका है युद्ध के लिए।
2: हम गोंडवाना के वासी हैं, हम युद्ध की तैयारी करते नहीं बल्कि हमेशा तैयार रहते हैं। आने दो उन्हें।
0: युद्ध हुआ, नरई नाले के पास हुआ, जमकर हुआ। रानी दुर्गावती ने अपने 1000 सैनिकों के साथ शत्रुओं की विशाल सेना को पहले तो अपने छापामार युद्ध कौशल से मार भगाया था। नरई नाले के पास संकरे दर्रे में फंसी मुगल सेना के 1000 सैनिक गाजर मूली की तरह काटे गए। अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर आसफ

0: राजा घबरा गया और अपनी बची खुची सेना लेकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन दूसरे दिन 24 जून 1564 को वो वापस आया।
1: महारानी, महारानी, अनर्थ हो गया महारानी। इस बार तो आसफ खां अपनी पूरी तोपें पहाड़ी के मुहाने पर ले आया है। सामने बहुत सारी तोपें दिख रही हैं।
2: कितनी बड़ी भूल हुई हमसे। यदि हमने कल रात ही धावा बोल दिया होता तो उनकी तोपों के मुंह खुलने से पहले ही नष्ट हो चुके होते।
1: जी महारानी।
2: अब पीछे देखने का समय नहीं है। वीर सैनिकों, आक्रमण!

0: अपनी पालकी में रखकर दुर्ग की तरफ ले जाओ, जाओ।
1: मैं रणभूमि छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी।
2: नहीं महारानी,
1: जलालू को तो पता चले कि किससे सामना हुआ था उसका।
2: महारानी काफी खून बह गया है, संभाले अपने आप को महारानी।
0: महारानी,
1: कौन?
0: रानी, मैं आपका सेवक आधार सिंह।
1: आधार सिंह, लगता है बहुत खून बह गया है मेरा। ये शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। और सामने देखिए, वो उनके विशाल सेना हमारी तरफ पड़ रही है। इसके लिए, इससे पहले कि वो दुष्ट मुगल मुझे बंदी बनाकर मेरा अपमान करे, ये लीजिए मेरी कटार, और अपने हाथों से मुझे मृत्यु के घाट उतार दीजिए, मुझे वीर गति दे दीजिए।
0: नहीं महारानी, नहीं, ये अधर्म ये दास अपने हाथों से कभी नहीं कर सकता महाराज, कभी नहीं। हम आपको मार कर जीने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। आप चलिए, आप चलिए, हम घेरा बनाकर आपको दुर्ग में ले चलते हैं।
1: क्या आप यही चाहते हैं कि हमारा अपमान हो? गढ़ा की रानी मुगलों की कैद में जाएगी? नहीं, रणभूमि छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आधार सिंह जी, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो गढ़ा की बेटी अपना फैसला खुद करना जानती है।
0: महारानी, छोड़िए मेरी कटार, छोड़िए।

0: राजहार सिंह जी, मैंने हमेशा माना है कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई दीवार नहीं होती। मृत्यु भी तो इस अमर जीवन का एक छोटा साक्षी ही है। हे मातृभूमि, हे मेरी गढ़ा माटी, तेरी सदा ही जय हो। जय पड़ोसी।
1: महारानी, महारानी, महारानी, महारानी, धन्य है आपका ये बलिदान महारानी दुर्गावती।
2: ये युद्ध इतिहास के पन्नों में भले ही अकबर ने जीता, लेकिन कीर्ति और गौरव की अमर पताका महारानी दुर्गावती की ही फहराई। मातृभूमि की आन बान और शान के लिए चंदेल राजवंश की बेटी और गोंड साम्राज्य की महारानी दुर्गावती के इस सर्वोच्च बलिदान ने लाखों करोड़ों देशवासियों के मन में देश के लिए मर मिटने की ऐसी अलख जगाई जो आज भी जिंदा है और सदियों तक जिंदा रहेगी।
3: नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक सुन रहे थे, रानी दुर्गावती। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार राजेश आहूजा, रानी दुर्गावती कुमकुम जैन, राजमाता पद्मावती सुचित्रा गुप्ता, राजपुरोहित महेश ठाकुर सुनील लोहिया, दीवान आधार सिंह योगेंद्र टिकू, अकबर राजेश काम्बोज, बीरबल कीमती आनंद, चंद्रशाह सुरेंद्र सागर, रामचेरी जया रामधर। अन्य भूमिकाओं में थे किशोर सहिजानी और ऐशान शर्मा। सहयोग हरदीप सिंह का था और संयोजक थे पुष्पेंद्र सौरभ। इस नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.akashwani@gmail.com पर भेज सकते हैं।
4: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को हैं। अब रविवासरीय संगीत सभा आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले की जाएगी।
5: केवल 9 वर्ष की आयु में आपने संगीत की तालीम लेने की शुरुआत की और आपके पहले गुरु थे प्रसिद्ध सितार वादक श्री श्यामल चट्टोपाध्याय। आगे चलकर आपने दिग्गज गिटार वादक पंडित देवाशीष भट्टाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपकी कलात्मकता केवल गिटार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि तबला, सरोद, गायन और योग आधारित सांगीतिक प्रस्तुतियां भी आपकी पहचान बनी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक रीट के कलाकार रितम शौरकार ने संगीत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी प्राप्त की हैं। रितम शौरकार अखिल भारतीय संगीत समारोहों के साथ साथ बंगाल के संगीत सम्मेलनों में भी भाग लेते रहते हैं। आप एक ऐसे गिटार वादक हैं जिन्होंने संगीत के विभिन्न सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों के अलावा संगीत की कार्यशाला

0: कलाओं में भाग लेने और व्याख्यान देने के लिए देश और विदेश की यात्रा की। यही नहीं, आप कैंसर से पीड़ित वंचित बच्चों की सहायता हेतु आयोजित सामाजिक निधि संग्रह कार्यक्रमों के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शरीर के सात चक्रों पर आधारित योग की एक परियोजना पर भी काम कर रहे हैं।
1: Tonight in the Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we present guitar recital by Ritam Sarkar. Beginning his musical journey at an early age of 9 years, Ritam Sarkar was initially trained under the sitar maestro Sri Shyamal Chattopadhyay and thereafter under the able guidance of guitar legend Pandit Debashish Bhattacharya. Later, he expanded his musical artistry through exposure to tabla, sarod, vocal and meditation-based musical presentations. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Ritam Sarkar has also been a holder of national and state scholarships in music. A proud participant at All India Music Festivals and All Bengal Music Festivals, Ritam Sarkar is a widely traveled guitar artist both in India and abroad to participate in music concerts and programs, musical workshops, as well as lecture demonstrations. Besides, Ritam Sarkar is actively involved with social fundraising events for the benefit of underprivileged children suffering from cancer and is also working on a meditation project on the seven chakras of our body.
0: आज रात रितम सरकार के साथ तबले पर संगत कर रहे हैं औषित जाना।
1: Tonight, रितम सरकार is accompanied on the tabla by औषित जाना।
0: गिटार वादन के इस कार्यक्रम की शुरुआत आप राग मालकोंस के साथ करेंगे। आलाप जोड़ और झाला से सज्जित यह बंदिश विलंबित झपताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: रितम सरकार begins his guitar recital with rag malkos. With alap, jor and jhala, the composition is set to vilambit jhaptal followed by drut tintal.

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप ऋतम शर्कार से राग मालकौंस सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग मेघ। आलाप से इसकी शुरुआत होगी और गत में इसकी बंदिश रूपक ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Raag Malkaus in the guitar recital by Ritam Sarkar. Continuing with the recital, he now presents Raag Megh. It begins with an alap and the composition is set to gat in rupak tal.

0: आप रितम शौरकार से राग मेघ सुन रहे थे। गिटार वादन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग किरवानी के साथ करेंगे। यह बंदिश कहरवा ताल में आबद्ध है।
1: You were listening to Rag Megh. Ritam Sarkar concludes his guitar recital in Rag Kirwani. The composition is set to Kaharwa Taal.

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप रितम शौरकार से राग किरवानी सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे औषित जाना। और इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यहीं संपन्न होती है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग किरवानी इन द गिटार रिसाइटल बाय रितम सरकार। ही वॉज अकॉम्पनीड ऑन द तबला बाय औषित जाना। And with this, we come to the end of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब पहले हिंदी में समाचार और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार में मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए

0: एपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज यूजीसी नीट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन 3 विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य के स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशहरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan today after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Mr. Shah also highlighted the potential of the dairy sector to transform the rural economy. Vice President C.P. Radhakrishnan has called upon graduating students to use their knowledge, skills and innovation for nation building guided by the principle of nation first. Addressing the 22nd convocation of SRM Institute of Science and Technology at Kathankulathur near Chennai, the Vice President said, India's youth have a vital role to play in the country's journey towards Viksit Bharat by 2047.
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM's growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economics and the society's future.
1: Recalling India's response to the COVID-19 pandemic, Mr. Radhakrishnan said, India supplied vaccines to more than 100 countries demonstrating its commitment to global welfare and humanity. The Directorate of Revenue Intelligence, that is DRI, has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area, that is SAFTA. The Finance Ministry said the investigation has so far revealed a potential revenue loss of more than 2,500 crore rupees. 9 persons have been arrested in connection with the case. Import of areca nuts into India attracts a basic customs duty of 100%. The National Testing Agency NTA today announced retests for 3 papers of the UGC NET examination, English, Commerce and Sociology, following complaints about several errors in these papers. The NTA said the English paper will be held on the 9th of September from 9 a.m. to 12 noon in Shift 1, while the Commerce paper will be conducted the same day from 3 p.m. to 6 p.m. in Shift 2. The Sociology paper will be held on the 10th of September from 9 a.m. to 12 noon in Shift 1. The NTA had conducted the UGC NET June 2026 examination from the 22nd to 30th of June across 87 subjects for the award of Junior Research Fellowship, eligibility for Assistant Professor and admission to PhD programs. In Jharkhand, students protesting against irregularities in state's recruitment examinations today burnt effigies of Chief Minister Hemant Soren, Congress leader Rahul Gandhi and RJD leader Tejasvi Yadav in Ranchi. Students raised slogans against the state government and reiterated their demand for the cancellation of JPSC and JSSC examination, alleging irregularities in the recruitment process. The protesters have also announced plans to get out the Chief Minister's residence on the 20th of this month. India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha for tomorrow. Similar conditions are also expected over Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Eastern Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh and Uttarakhand for the next 2 days. The Met Department has said that heavy rainfall is expected over Assam, Meghalaya, Bihar, Haryana, Chandigarh and Delhi for tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारा ये प्रसारण यहीं पर संपन्न होता है। अपने कल प्रातः के प्रसारण के कार्यक्रमों के साथ कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि, जय हिंद।